आकाशवाणी सुनने वालों भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आई एम योर फ्रेंड जाइडियो, वेलकम यू टू दिस वीक्स एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया, विच कम्स टू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एनसीएन रेडियो। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू ब्रिंग यू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ यस्टरडे। And so we invite you and your family to stay tuned to the voice of Guyana as we begin this melodious joyride, one in which we shall recapture the nostalgic memories of yesteryear. And it's about time that we put the show on the road. Let's go!

0: गोरी बनी काले की पटरानी हो गई, देख पटरानी हो गई।
1: दुनिया ना तेरे बाप की ना मेरे बाप की, मैं काहे को रानी बनूंगी काले बाप की।
0: अरे दुनिया